0: करेक्ट करना है। No EMS services anywhere available.
1: Affirmative.